मुख पंजन बिरद बिरदायो है। जो ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी भये, नरक निवारण जगत जस गायो है।

रब दा सुनेहा देते हन भाई आओ जुड़ो सच दे नाल ए दुनिया दे लोको क्यों परमा भुलेख्या विच पए हो एक परमेश्वर दा नाम सच है ओदे नाल जुड़ो आपे ही सारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। ते इसलिए भगत रविदास जी कहंदे ने तुम जो नायक आशो अंतर जामी प्रभ ते जन जनीजै जन ते स्वामी। तो असी भी कोई सेवा करदे असी भी कुछ तेरे लगदे हां तो ही मोही।

आवाज आई कि इस धरती ते बड़ियां पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद ले इतना तरस रहे, इतना व्याकुल

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद आनंद साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्ना दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगी वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इस नूं राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई, इस नूं गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सीगा।

0: कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं ते गुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो।
1: गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज का अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख के कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं किते जा सकते। कतों हुंदे सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा, ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खोह लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा है। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच